करो हरी जगत जगतारे भजन करो हरी जगत जगतारे भजन करो।

0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वही दिन वही वार जिसका हम बेसब्री से करते रहे थे इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और
0: सुजल का सादर नमस्कार। क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जवानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें यह संकल्प और व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय, इस बार धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन से ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव के अभियान की पुकार। साथियों, इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज वन में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करने ओपन डिफिकेशन फ्री यानी ODF भारत बनाना था और फेज टू में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छता, तुमको याद है कि ना, देश के सभी गांव ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री, जिसे हम ODF भी कहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी सुधार लाती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचड़े का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचड़ा और जल का जमाव न हो।
1: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को

0: यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.01 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदा जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यवहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता

0: के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। न हम कचरा फैलाएंगे, न दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना, आपको और ये आपके क्षेत्र में क्रियान्वित हो, इसके लिए आप लोगों को सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल, साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, कैसे?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: मेरा काम सबको बीमार बनाना। चलो तुमको रामपुरा गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुरा गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।
3: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े के ढेर से निकलकर कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते तो हैं मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वहीं तो बसती हूँ मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्कर्ष शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
4: घर के शौचालय तो है पर नल की टोटी खराब है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं। ऐसे शौचालय ना होने पर तो क्या हमें फिर से खेतों में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
3: ये है मेरी एक और जीत।
1: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय हैं और भी लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए,
5: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाए हुए कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
4: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
3: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उसके रख रखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ा दान का भी प्रयोग

0: नहीं करते।
1: एक दिन गांव का एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर आंखों में नए भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
2: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी क्यों हैं? और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
3: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं तो सच कह रही हूँ बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही ना हो।
2: सब समझ गया चाची, अब समझ गया मैं, इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये अस्वच्छता है।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, मैं हूँ इन सब का कारण। बोलो क्या करोगे तुम, बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी मैं अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
2: अच्छा तो तुम हो दूसरा और ये सब तुम्हारा किया डरा है? अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया क्या करोगे, मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालय का रख रखाव नहीं कर रहे हैं, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे भी सभी लोगों पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है, लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
2: दुष्का तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहा है और हमारी गांव की जनता को समझ है, वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए शौचालय में रख रखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय पर करती रही है, समझती थी उसका?
0: हाँ समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदा पानी तथा मलिन कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
1: दूषिका, गंदा जल प्रबंधन और मलिन कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा, घर और सामुदायिक स्तर पर वाटर सस्टेनेबल पॉन्ड बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड डेवाट्स मल का कीचड़ जैसे संरचनाओं से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी। सुजल गांव में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
2: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताएं बहनें और बेटियों की गरिमा भी है, ये हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाते हैं, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों में शौचालयों का रख रखाव और उनकी सफाई करना मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदा जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
1: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रख रखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदा जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था, लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है।
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां साफ कर दी है, क्या हो रहा है, ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया है, दुर्गंध कहाँ गई, मच्छर कहाँ गए, गंगा जल नहीं फैल रहा, अरे अरे अरे गांव में से ये सब क्या हो रहा है।
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका, गाँव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रख रखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका। अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है। शौचालय प्यार।

0: अरे नहीं नहीं नहीं, शिक्षिका की चमक मेरे गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है, सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा, शौचालय का नियमित रूप से रख रखाव हो रहा है, नाली साफ कर दी, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है, घर का गंदा जल घर के किचन गार्डन में सोखता गड्ढा में ही प्रयोग हो रहा है।
1: शिक्षिका सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं, सुजल की बातों को गांव वाले दोहरा रहे हैं।
2: खुले में सोच को ना कहो,
3: बीमारी को दूर भगाओ,
2: शौचालय साफ रखो,
3: स्वच्छ गांव बनाओ,
2: अपना कूड़ा कचरा करो सही निपटान,
3: तभी बनेगी गांव किसान।
1: दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मेरे को भी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकती हो, तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जनभागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल दिया, अब मुझे जाना होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं, तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदगी तो होनी ही है, एक दिन छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है, गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव होने दो।
4: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूसिका, गंदे शौचालय और गंदगी से भी बीमारी बढ़ती है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
5: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है क्या, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है, गांव वालों अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष को क्या हाथ लगाना, अब नहीं बोलोगी।
1: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा, और सुनो सब लोग शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
3: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता रखेंगे और हमारा गांव ओडीएफ प्लस मॉडल बनेगा, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो।
1: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदा जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण करें, साथ ही रख रखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलिन कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़े। गांव रामपुरा अब नहीं रहा पहले जैसा।

0: हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
1: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेदारी है, हर दिल की अब तैयारी है।
2: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान।
0: मजा आ गया ना, हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस बात का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए इस संदर्भ में एक स्वच्छग्राही से की गई बातचीत सुन लेते हैं।
3: स्वच्छग्राही ये कौन होते हैं?
0: स्वच्छग्राही वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छग्राही हमारे बीच में है। नमस्ते सर, क्या नाम है?
4: नमस्ते मैम, मेरा नाम दयाराम रजक है।
0: दयाराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से स्वच्छ भारत मिशन में जुड़े हुए हैं?
4: जी मैं ग्राम पंचायत जुगियाई से बिलोंग करता हूँ और मैं 2015 से काम कर रहा हूँ प्रेरक का, क्योंकि पहले स्वच्छ हितग्राही में मेरा चयन हुआ था, इसके बाद जनपद पंचायत से मुझे प्रेरक के रूप में रखा गया था आदरणीय शिव सर के द्वारा।
0: तो आप हमें दयाराम जी ये बताइए कि जो स्वच्छता ग्राही का सफर था, क्या क्या काम था उसमें, क्या क्या गतिविधियां आपके अनुसार की गई हैं और आपने गांव में जाके कैसे लोगों को अवेयर किया, वो थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए।
4: जी, जो हमारे गांव की गलियां हैं होती हैं, तो पहले ज़्यादा गंदगी रहती थी
0: जी,
4: तो इसके बाद क्या हुआ कि जनपद पंचायत से निर्देश अनुसार किए गए, तो हर गली हर मोहल्ले में जाके समझाया उनको, फाइव के बारे में बताया गया, इसके बाद शौचालय का निर्माण करवाया गया, उसमें भी हमारा अच्छी भूमिका रही। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे कि जिद्दी टाइप की कि नहीं बनवाना है, बाहर ही अच्छा लगता है, तो उनको भी समझा बुझा कर उनको भी अवगत कराया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, तो उसमें हमारी ही सुरक्षा है, तो उनको भी समझाया गया, उनके 12,000 राशि भी दी गई थी। और स्टार्टिंग में तो मनरेगा से बनती थी जो कि सरपंच निधि द्वारा बनाई जाती थी, तो उसमें 9,000 थे
0: जी।
4: तो कुछ परिवारों की पहले बन गई थी 9,000 के टाइम, फिर इसके बाद शासन के द्वारा राशि बढ़ा दी गई थी, 12,000 हो गई थी, तो फिर 12,000 की राशि दी गई।
0: आपने बताया कि शौचालय बनवाए गए हैं सरकार द्वारा और नरेगा के माध्यम से बनवाए गए थे पहले के टाइम में, लेकिन अभी हम बात करें स्वच्छता को लेकर, तो हमें ये बताइए कि स्वच्छता की जब बात आती है और आपने क्योंकि गांव वालों के साथ मिलकर काम किया है, तो क्या लगता है आपको कि लोग कितना जागरूक हैं स्वच्छता को लेकर और शौचालय को लेकर?
4: मैम देखिए, जो पहले का माहौल था तो उसके समझाने पे और शासन की गाइडलाइन के अनुसार आज बहुत कुछ बदलाव हुआ है, यानी कि 99% बदलाव हुआ है। कुछ परिवार ऐसे हैं कि वो मानते नहीं, परिवार के कुछ सदस्य सब नहीं, आज की हमारी बहन बेटियां हैं तो वो तो कोई नहीं जाता बाहर जी, और कुछ लोग हैं जो खेत खलियान वाले हैं वो चले जाते हैं बाहर, बाकी बहन बेटी हमारी नहीं जाती।
0: आपके अनुसार आपका गांव जुगियाई है और आपने वहां भी काम किया होगा, तो आपके गांव जुगियाई में कितने प्रतिशत शौचालय बने हुए हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है?
4: देखिए, मेरे जुगियाई पंचायत में 480 परिवार हैं
0: जी,
4: 480 परिवार में 101 शौचालय का निर्माण हुआ है।
0: 101
4: जी मैम, और ऐसा कोई नहीं व्यक्ति है, मैं बता रहा हूँ जो खेत खलियान वाले हैं वो निकल जाते हैं घूमने फिरने, इसके अलावा मेरे यहाँ ऐसी कोई गली नहीं मिलेगी आपको जहाँ गंदगी हो, यानी कचरा भी कचरा दानी में फेंकते हैं, क्योंकि मेरा गांव जी मैम क्या है कि मेरा गांव जो है आदर्श ग्राम

0: पंचायत
1: अच्छा
0: है
1: उसमें
0: जी
1: आता
0: मैम,
1: है।
0: तो उस टाइम से और आज देखिए तो शायद निवाड़ी जिले में कोई गांव ऐसा
1: बहुत बढ़िया, ये सुनकर बहुत
0: हो
1: अच्छा
0: जी
1: लगा
0: मैम।
1: कि स्वच्छता को लेकर आप खुद भी अवेयर हैं और अपने गांव के लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब हम कचरे की बात करते हैं तो सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों एक साथ ही डालते हैं ज्यादातर लोग, इस पर लेकर आपने क्या अवेयरनेस क्रिएट करी है गांव में?
0: जी नहीं मैम, मैं सूखा अलग जाता है क्योंकि मेरे गांव में कचरा गाड़ी भी अवेलेबल
1: जाती है।
0: है, जाती है सुबह से, तो सूखा अलग और गीला अलग जाता है मैम। और डैम भी बनाए गए हैं हमारे महोदय सरपंच के द्वारा
1: अच्छा
0: जी, तो सूखे का अलग है और गीले का अलग है मैम।
1: अच्छा इसके मैनेजमेंट के लिए क्या कोई टीम गठित की गई है अभी है या नहीं है, या कैसे इसको मैनेज करते हैं कि गांव वाले सूखा और गीला कचरा अलग-अलग करें? हाँ
0: नहीं वो तो गाड़ी जाती है,
1: हाँ
0: तो हमारी जो माँ बहन है तो उनके द्वारा सूखा अलग डाल दिया, दो डिब्बे लगे रहते हैं कचरादानी में
1: अच्छा गाड़ी में कचड़े के डिब्बे अलग-अलग
0: अलग
1: लगाए
0: अलग
1: जाते
0: रहते हैं जी
1: हैं,
0: मैम।
1: ऐसा तो नहीं एक गाड़ी
0: नहीं
1: होती है
0: नहीं
1: उसमें लिखा होता
0: नहीं
1: है इसमें
0: ऐसा
1: गीला
0: नहीं
1: इसमें
0: है,
1: सूखा, लेकिन
0: अलग
1: जहाँ वो
0: अलग
1: एक ही जगह रहा है?
0: अलग अलग डिब्बे डले हुए हैं, और जो निर्माण हुआ है सूखे का अलग है और गीले कचरा का अलग है मैम।
1: आपके कुछ चुनौतियां भी आपने देखी होंगी जब, क्योंकि लोगों को जब आप अच्छी बात बताते हैं
0: जी
1: तो
0: वो
1: बहुत
0: तो
1: कम हजम होती है,
0: जी,
1: तो वो
0: तो
1: क्या चुनौतियां थी आपके सामने?
0: कुछ लोग थे ऐसे जिद्दी टाइप के कि नहीं हम नहीं जाते, तुम होते कौन हो, तो उन्हें हमारे जो सरपंच महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, जीआरएस महोदय हैं, तो इनके द्वारा ले जाके अपनी टीम को और जो हमारे साथ और एक दो लोग ऐसे होते थे उनको ले जाके हम समझाते थे जब
1: और क्या ऐसी
0: हमसे
1: चुनौती जो आप हमें बताना चाहें कि गांव में जब काम करते हैं
0: जी।
1: लोगों की भलाई के लिए जब हम कोई काम करते हैं अच्छे के लिए जो काम
0: हाँ
1: करते
0: तो
1: हैं, क्या और चुनौती आपको ऐसी आई थी जो आप बताना चाहें हमें?
0: जी, तो क्या है एक चुनौती की जो मेन सड़क होती थी है, तो उस मोहल्ले की मान लो कचरा रोड पे ही फेंकते थे लोग, मानते ही नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ी चुनौती आई थी कि माननीय विधायक जी तक से बताया गया कि ये मोहल्ला जो है नहीं मानता है, तो फिर उन्होंने व्यवस्था करवाई कि काम करो इसको हटा के सीधे सीसी करवा दो, यहाँ पे गली खत्म कर दो, तो उन्होंने सहयोग किया तो आज सीसी हो गई मतलब, और वहाँ पार्क निर्माण करवा दिया माननीय विधायक जी
1: अच्छा
0: के
1: तो अगर आपके गांव जुगियाई में अभी कोई जाता है देखने के लिए, अगर हम वहां पर पहुंच गए देखने के लिए, तो ये सब चीजें हमें वहां मिलेंगी
0: जी।
1: अगर कुछ नहीं मिलता है तो?
0: नहीं मैम ऐसा नहीं है, और आदरणीय कलेक्टर महोदय भी महीने में एक दो बार जाते हैं
1: अच्छा
0: जी
1: बहुत
0: मैम
1: अच्छी बात है दयाराम जी, और आपने हमें काफी कुछ बताया है। बस चलते चलते एक लास्ट सवाल है,
0: जी
1: आप गांव वालों को और क्या कहना चाहते हैं? जैसा आपका गांव एक अच्छा गांव बना है, स्वच्छ गांव बना है, और दूसरे गांव वाले को आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कचड़े का शौचालय का किस तरह से आपका देखभाल करनी चाहिए, या फिर उनको कैसे सही तरीके से निपटारण करना चाहिए इसको लेकर?
0: यही सभी से अनुरोध है हमारा कि जैसा कि जुगियाई ग्राम पंचायत है और हमारे बगल में नीमखेरा ग्राम पंचायत है और राजापुर ग्राम पंचायत है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले का जो माहौल था आज वो गंदगी बिल्कुल नहीं है वहाँ
1: तो स्वच्छ भारत मिशन
0: पे
1: सफल है कहीं ना
0: जी।
1: कहीं।
0: जब ODF हुआ था उस टाइम सारे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं नेतागण हमारे जो सभी गए थे ODF के लिए, तो सभी ने उसका निरीक्षण किया था, इसके बाद ODF भी हुआ था हमारा
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: जी मैम
1: नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
2: स्वच्छग्राही सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छताग्रही बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
3: मुझे लगता है सुजल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है, और आगे भी सारे गांव को ODF प्लस मॉडल बनाकर ये जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
2: सही कह रही हो स्वच्छता, मैं जब छोटा था गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी सबको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे, और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
3: तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
2: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है, और इसलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छताग्रही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में और बनाए रखने में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।

0: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यह योजना हर स्तर राज्य जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित कर किया जाता है तथा ग्राम स्तर की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
1: बस बस मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं, वह किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वह भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य है।
0: मैं समझ गई।
1: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों ने के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था,
0: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
1: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। सबसे पहला स्लोगन हमारे जमुनिया के दीप सिंह राजपूत जी ने भेजा है, आप लिखते हैं, आओ फिर एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें, आवाज उठाओ, गंदगी मिटाओ। लालपुरा के दिनेश कुशवाहा जी ने भी एक स्वच्छता का स्लोगन भेजा है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। और तीसरा और आखिरी हमारा स्लोगन हमें भेजा है प्रकाश कुशवाहा राजावर से, आपने लिखा है, बापू ने दिया था संदेश, स्वच्छ रखो भारत देश।
0: वाह, यह तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
1: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
0: तो भेजिए जल्दी से जवाब, सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले कार्यक्रम में। हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
1: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छता स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उनकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल दर्पण दिवस क्या होता है? यह जानकारी के साथ जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कलेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको।
0: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर रखरखाव के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग ना करें, यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सुनते रहिए आपका अपना रेडियो, रेडियो बुंदेलखंड 90.4।
0: फिलहाल स्वच्छिका और
1: सुजल को दीजिए जाने की अनुमति,
0: फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है।

0: साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की, या फिर व्यक्तित्व विकास की, या फिर सफल कहानियों की, या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे, और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा, और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है, भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती है, पीछे पीछे चली आती है, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है से आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना

0: आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा पड़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को, और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो करें। सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें।

0: एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
0: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इनको तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है

0: आखिरी बात है नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य से कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे। सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, जिसके लिए हमारा नंबर है
0: 9219207749।
1: साथियों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारा पता भी है जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम उर्चतेगला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनो ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो उन्हें जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कुके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बियो ने देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव

0: उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आओ चला थेंगे राधापुर।
1: अपना रेडियो

0: अम्मा?
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं?
1: हाँ।
0: कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
0: आंगनवाड़ी में होंगी अब? कितने हाँ। साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं
1: हाँ,
0: के नीचे हाँ, रहते थे। आपके परिवार में को हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब करते हो। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते है, 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत
1: रहता।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो हाँ। बचपन में और का काम आपने? पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसमें और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेलने की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते तो।
0: अच्छा,
1: चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा
1: सावन को चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जो खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? हाँ। खेलत में गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते? पहले तो गा सुनियो आप।
1: अरे भूल गए, तो बड़ा को ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको? लेकिन बड़ा को नहीं लगा था
1: आपको? नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाते
1: हैं? कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियन को जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी ना हो तो काल को पुष्पा ना हो तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: हो जाता
1: है, कभी इकट्ठे हो जाता है, खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता
0: है। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलाती थी?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहरते और फिर आके पहरते और फिरा कर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते और हम तुमने फिरा कर दे रही तो भी पहन नहीं बस, और ये ही कह रहा हूँ।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं है?
1: कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भैया थी।
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी।
0: बिल्कुल नहीं जानते? अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखा तो?
1: हाँ।
0: पहले से देखा तो?
1: हाँ। नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: से कहते ही हमारे बाप बताई 8-9 साल के कहते हैं, 9 साल के,
0: 9 साल के
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिन दिन को काम करते हमारी मताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 रुपए
0: सही बात।
1: उन लोगों ने सबने 100 रुपया देने में दाए थे।
0: अच्छा।
1: हाँ।

0: बताए ना उनके कई मतलब
1: 500 रुपया में ब्याह होगा
0: नहीं सब से जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुन में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग
1: जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधनीपुर में भाई है
0: राधापुर
1: ससुराल है आपकी तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगे जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: पहले पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बो टीका
1: अच्छा 3 दिन को ब्याह हो
0: तो हाँ 3 दिन को होता
1: तो बरात 3 दिन मिली रही थी
0: एक दिन 3 दिन मिली रही थी बरात
1: तेल वादना
0: नहीं ब्याह तो टीका के देना
1: अच्छा।
0: और फिर भाव मार बरात टीके तो वो देना छोड़ी जाती बरात दूसरे दिन जाती
1: तो जब जयमाला डरी तो अभी
0: जयमाला नहीं डरी हाँ जयमाला नहीं डरी मैंने तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार के उसे अपन खोलियन खोलियन पे चला वही को लांगा वही को दुपट्टा
1: अच्छा।
0: और जब तुम जो होट बल्लाल बापो बल्लाई
1: चावल
0: मार दे
1: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कछु बताओ
0: नहीं बता हमें नहीं बता
1: अच्छा चावल को कछु पता ही नहीं
0: मड़वा के नहीं और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने
1: फिर उसके बाद
0: बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत हो लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ो चढ़ो फिर भावरे
1: कहाँ चढ़ो तो आपको
0: हमें पेज में चढ़ी 1 किलो के और खम वज्जा
1: 1 किलो की पेज
0: ना हाँ 1 किलो की पेज ना और खम वज्जा
1: बस
0: और जाइए तो पैर अति पैर नहीं
1: बाजू बंद
0: हाँ बेचारे थे
1: अच्छा
0: तो अभी रखे हो आप
1: की
0: बात अच्छा होगा छह लड़का के ब्याह कर ले
1: अच्छा
0: से
1: सही बात है अच्छा आपकी विदा का है भाई दी
0: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं वही में वही थी
1: विदा
0: उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में
0: पहले बैठी थी कब बैठ जाते हमारी गाड़ी गई से
1: आई थी अच्छा बैलगाड़ी
0: से होती पहले बदा सवाई की होती है मजी का
1: अच्छा
0: पहले के वाहन कहाँ थे ओरछा तक नंगा जाते खेला तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी
1: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है
0: अगर तुम्हें कास देव में जाना तो गाड़ी
1: से जाना है सही बात है तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकू मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी
1: अच्छा आपके अम्मी नंबर की है
0: दूसरे नंबर के नानी दादो
1: नंदन की शादी हुई अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: बड़ी अच्छा तो फिर आपके एक एका का रस में भाई मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे 2-3-4 दिन रहे थे फिर चले गए थे
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी ने बना दी थी
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा
0: तो आप दे
1: अच्छा और खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर कहा
0: नहीं मिलो तो हमें नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: उल्टा नहीं मोरा
0: पहले देता ही थे अभी भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा चाहे 10 दर है चाहे 11 हो चाहे 100 लेकिन सास ले और अंडा तो रखत बहु तो बेबी सास ले
1: अच्छा
0: सास ना हो तो जेठानी
1: में तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुला
0: नहीं हमारे समय में नहीं खुला
1: जूड़ा नहीं खुला
0: नहीं
1: अच्छा आपकी जो
0: छोड़ा खोलते जो
1: छोड़ा खोलते
0: जो छोड़ा
1: तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है
1: खोल सकती
0: है खोसा खाती सास
1: इसो काम हाथ तो होता मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: महा थुज
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: ना, छोटे आते तो कछु दे
1: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिल के
0: जेठानी के संग कराते लड़ाई का होती
1: कहूँ लड़ाई नहीं हुई आप
0: नहीं हमारी नहीं भैया जेठानी

0: না সাত সে ভাই কেউ না
1: সিধে
0: মিলকে কাল দেখতে সব সিয়ানি হোগা সে সব অলগ অলগ হোক
1: আচ্ছা শাশুড়ি মে কাকা কাম হতে
0: খেতে হতে রাত সে খেতে হতে পেলে মোটর কাহ হতে রাত ওই সে খেতে হতে তো রাত চালাত রাখতে
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती है
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से
1: कितने बजे उठती हैं आप
0: चार बजे उठ जाते
1: हैं
0: चार बजे से पी सकते सो पाँच छह किलो नाच पी सकते
1: पाँच छह किलो रोज पी सकते
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो चार बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: है कभी संगे कभी अलग अलग पी सकते
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम आता है
0: गोबर गोबर डाल रखते
1: कितने गाय भैंसे होती
0: है दस बारह गाय होती गोबर मोबर डाल रखते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते सो घाट चलाते दिन भर
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं बैलेंस से
1: बैलेंस
0: घर में नहीं आती लोग सो भाई चलाते रहते कब हम सात बैठा नहीं चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है छह लड़का
1: छह लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है एक
1: लड़की नहीं है एक तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: हाँ पढ़ा को पढ़ा में परेशानी आती से कुछ नहीं पढ़ा
1: अच्छा
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हुए
0: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई
1: अच्छा नातीन की भी हो कितनी नाती
0: है छह नाती है छह नातने हैं
1: अच्छा तो
0: बिला आती
1: को मतलब
0: बिला
1: बड़ा परिवार है
0: हाँ तो छह लड़का है तो दो दो है सबके
1: अच्छा,
0: और एक के चार है बड़े के तीन मोड़ी है
1: तो एक मोड़ी
0: तो आप बिरोबर हो गए
1: तीन
0: ना ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको अच्छा
0: लगा था तीन तीन भाई बहन सब जने आ जाते हैं तो और अच्छा लगा था ये ना तो
1: आप
0: सुमाटा नहीं खेलती हो क्या सब खेलती है आप अपने सुबह
1: तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेला गाना गाते हैं अब वही
0: रात सब भूल
1: गई
0: हम
1: भूल नहीं आते याद करने आते बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप
0: 20 साल से ज्यादा हो गई
1: जैसे आपने पढ़ाई पास तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी
1: कैसा लग गई थी मतलब
0: पहले उन्होंने इन्हें चार जन्म के कागज दिए थे घर के तो सब में 200 रुपया में लगते
1: अच्छा
0: तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें नहीं करने से फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत है 350 में लगते हमें 200 रुपया
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे रहे वो करे तो मैं 2-4 पेली नाच खावे के लाने बजे का कर इनके ससुर दे देते 2-4 पेली नाच हम पानी भरे आते इनको फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो हमने बनक नहीं अरे जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब इसे पानी भर उनको उन्हें खाए पीवे की परेशानी से जैसे नहीं आते जो दे तो सकते खाओ नहीं करते तो कुछ
1: सही बात है दे
0: रहे तो कुछ ना करो
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
1: फिर
0: 350 है हमारे फिर 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो
0: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली पर से जाकर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें
0: चौपड़े में तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए
0: जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ
1: सही बात है लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
0: है ड्रेस मिल रही है लेकिन मिल रहा है पहले कहाँ मिला
1: हाँ पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाए चाहिए है ना बिल्कुल तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए
0: अपनी सब हमारी सब 8-8 पढ़ी

0: अपने नाती पड़े
1: हाँ
0: सब पड़ा रहे को पड़ रहा को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब सात सात आठ आठ में करके छोड़ दो ब्याह पड़ दे ना तो धन की
1: बहुत बढ़िया आप
0: मां को पड़ दो अब दो नाती पड़ रहे की
1: चलो बढ़िया माँ आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताओ ये खिलाने बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो के इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, क्या कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कैवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलाबी में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़तो। तो देखो अब अपनो समय होते वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गांव में या आपके आसपास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैंगे, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैंगे, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैंगे तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैंगे। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, क्या की आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को हम सुनेंगे, क्योंकि अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी हमारे जो जान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहती।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपनी खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से दो गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70-80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं, तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही

0: को मौसम एक या दो दिन का खुला दिखे और जैसे हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
1: जी।
0: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
1: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
0: जी
1: विधि
0: सर,
1: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
0: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60 बाई 60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60 बाई 45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
0: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा लगती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई है ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
0: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर मिर्ची भट्टे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूंकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही है, जिसको हम पीथियम पेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजैब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: जी। बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें?
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल

0: फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वेराइटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वेराइटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वेराइटी की, या काशी लालमा वेराइटी। ये भिंडी में आए सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वेराइटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वेराइटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। जी हाँ दोस्तों, आसपास कार्यक्रम में अपन आप आसपास को कवरेज करते हैं, जो अपने आसपास में चल रहे गतिविधियां हो रही उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो अपने पुख नक्षत्र है, तो पुख नक्षत्र में कई गांव के लोग आउट हैं, कई जगह से लोग बाग आउट हैं, सो उनसे उनकी राय जानी है पन्ने के वे काय के लाने आए हैं और कब से आ रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे भैया ब्रिजकिशोर जी आए हैं जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों अपन ब्रिजकिशोर भैया जी से मिले हैं और उनसे जाने कि भाई कब से पुख नक्षत्र में आ रहा है और पुख नक्षत्र को क्या महत्व है और ये कौन सी इस दबाव से आ रहे हैं। सो दोस्तों भैया ब्रिजकिशोर जी से अपन जाने इन बातें को। और दोस्तों ब्रिजकिशोर भैया जी से मिलने से पहले अपन एक बढ़िया से गीत को सुनते हैं और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दिन के संग में।

0: देखो दोस्तों, जो सुनो अपन सब जन ने गीत और गीत को आनंद लो है। गीत खुंगा रहे थे राजकुमार त्यागी जी और उनके संगी साथी। आप दोस्तों एक क्रम में अपन गीत के संगे संगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में मिलते हैं भैया ब्रज किशोर जी से जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों आओ भैया जी से जाना थे उनको नाम पतो और ये कब से पोख नक्षत्र में आ रहे हैं। सो आप पहला तो अपना नाम पतो बताओ, क्या नाम आपको? ब्रज किशोर जी, कहाँ के रह विवाह हैं अपन? कहाँ के रह विवाह हैं अपन? हाँ,
1: कुगा गाँव।
0: कौन सा गाँव?
1: कुगा गाँव।
0: कुगा गाँव जो कितने पड़ता अपन? कुगा गाँव
1: मऊ
0: के बातर पे पड़ता। अब अपन बात करें पोख नक्षत्र की, तो आप कितने साल से आ रहे पोखन में?
1: ब्रजन के आ रहा
0: है। अच्छा, ब्रजन
1: जो जो भी नहीं है पहला हमारे बंद के।
0: हाँ,
1: अब जो है तो जब जब मिलू तब आ जाए।
0: तो आप जैसे इतने आउत पुख नक्षत्र में, तो आप कौन सी श्रद्धा लेके आउत के हमारा कुछ कोनो काम होना चाहिए या फिर हम तो भगवान के दर्शन कर भी के लाने आउत?
1: दर्शन के लाने आउत के हमें तो खुशी है कि भगवान के दर्शन करे। हाँ। तो हम अपनी मेहनत से एकदम सहा दीजिए बस।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब हम मेहनत करें और दर्शन कर भी के लाने आओ, आपको सहारो है। चलो बहुत अच्छी।
1: हम खेती में अपनी काउ में भी मेहनत करें तो हमें सहा दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लाभ होना चाहिए, हमारे अच्छी होने पूर्ति होना चाहिए।
1: ये बात है,
0: क्या बात है। सो एक लाने
1: जाए तुम गलत माया दू ना, हमें जो कछु नहीं चाहे।
0: अच्छा,
1: हमें तो अपनी पसीना डालो जो हमें
0: मेहनत को फल चाहे।
1: मेहनत को हमें गंगा माई दे दू।
0: अच्छा,
1: तो गंगा माई से हम सब कछु करें।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आप जो एक दिन से आ रहे, तो अभी तक आपने भगवान से कोनो अर्जी लगाई? भगवान से कोनो अर्जी लगाई कि भगवान हमारा काम जो हो जाए तो हम
1: लड़ाई से हमारा हो जाए?
0: अच्छा, लगाई सो हो जा रहो। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि अर्जी लगाई सो हो जा रहो।
1: और देखो, ये बच्ची के लाने लगाई थी।
0: हाँ,
1: है तो लला के थे।
0: अच्छा,
1: हमसे बच्चा बहुत हूँ।
0: हाँ,
1: वो हमारी आई जी जा रही थी हम मोरियन से।
0: हाँ,

बिल्कुल दोस्तों, दशरथ राजकुमार नजर तुहे लग जाएगी। देखो कितनो प्यारो जो गीत सुनो अपन ने, और गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मिथिलेश कुमार जी। अब दोस्तों मिथिलेश कुमार शर्मा जी के गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे के आज को अपनो ये कार्यक्रम आसपास से जाबे को समय होगा है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

देखत ही हर सा गई जब बगिया

कनिया सबरी पंख पसारे, कनिया सबरी पंख पसारे, ले तन रस मुस क्या गई जब बगिया, ले तन रस

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इवन अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों अब समय होगा अपने अगले कार्यक्रम हेलो फरमाइश को। सो हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सब जन को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो उठाएं फोन लगाएं हमारे नंबर को, हमारा नंबर है 92 19 20 77 49। जो नंबर लगा के आप कार्यक्रम में अपनी फरमाइश करें। सो दोस्तों आओ एक क्रम में अपन सुनत हैं बढ़िया बढ़िया से गीतन को, लेते हैं गीतन को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। एक बार नंबर आप फिर से लिख लो, अगर आपने नहीं लिख पाओ है तो नंबर अपनों इस प्रकार से है 92 19 20 77 49। सो जो नंबर लिख के और कार्यक्रम में हेलो फरमाइश में अपनी फरमाइश कर सकते। आओ दोस्तों अभी एक क्रम में अपने गीत को सुनते, गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी भैया, कहाँ से?
1: हाँ भैया नमस्कार
0: नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।
1: जी। भैया हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। बढ़िया
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: है भैया, अच्छे हैं।
0: बताइए तो आज कौन सा गीत सुनेंगे? हेलो फरमाइश में
1: अभी अब गणपति जी का समय रहा है
0: जी।
1: तो फिल्म डॉन से सुनवा देंगे, मोरिया रे बप्पा मोरिया।
0: अच्छा
1: जी
0: चलो, और का हो रहा?
1: बाकी सब ठीक है भैया, काफी तेज धूप है मौसम तो आज।
0: अच्छा
1: हाँ जी, तो
0: चलो ठीक है, तो अपन गीत की ओर चलें का?
1: जी, बहुत बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: बहुत धन्यवाद आप।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी भैया, कहाँ से? अच्छा,
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। जी
0: जी हारम जी, कैसे हैं?
1: आप कैसे हो?
0: बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है।
1: जी
0: बताइए क्या हो रहा है?
1: बस कुछ नहीं हो रहा, बस बैठे हैं, फोन लगा दिया, आपको याद कर लिया, बस
0: चलो,
1: आपसे
0: बहुत
1: बातचीत हो रही है। जी
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: अजीब दास्तान है का ये का सुना देना आप गाना,
0: कौन सा गीत है?
1: तेरा प्यार है क्या, कुमार सानू का अग्नि की आवाज में सुनवा दो आप।
0: तेरा प्यार
1: प्यार है क्या, ना हो तो फिर हम दूसरी बता दूं,
0: बस
1: और कस काम चल रहा है आपका।
0: बस आप लोगों की सेवा में लगे हैं।
1: अच्छा, और बारिश मारस कैसी हो रही है आपके इधर? जी
0: बारिश तो आज नहीं हुई, कल हुई थी बारिश।
1: जी अच्छा
0: शाम के समय में पानी अच्छा बरसा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: और सब ठीक ठाक है मंगल? जी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी हमारे इधर भी मौसम खुला है 2 दिन से, आज भी धूप के लिए बादल छाए हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: हाँ, तो आज बादल तो आज भी छाया, अभी धूप निकली आती बादल भी हो जाते हैं।
1: जी।
0: हाँ ऐसा ही है।
1: और कहा गया मध्य प्रदेश में भुट्टे खा लीजिए आप, आपका इंतजार है।
0: भुट्टे तो सही कह रहे हैं आप, भुट्टन की तो भरमार है, भरमार है भुट्टन की।
1: भुट्टन को तो भरमार है, भुट्टे आ चुके हैं।
0: हाँ
1: जी
0: आपके यहाँ होते हैं भुट्टे?
1: जी बोरा है, 1-2 साल से,
0: हाँ
1: 2 साल से बोरा है, पर इस साल तो अभी नष्ट हो गया था,
0: हाँ
1: और अब इस साल जा रहे मक्का बोदाई,
0: चलो सही किया आपने।
1: वो और का 5 पसीर बीघा नकली सोयाबीन, दाना नष्ट हो गया, सोयाबीन नष्ट हो गया,
0: हाँ
1: कुछ रोग लग गया तो
0: जी
1: आपकी साथ जा रहे मक्का बोदा ही, सोयाबीन कम बोदा हुआ 8-8 बीघा में,
0: हाँ
1: और क्या।
0: चलो ठीक है, ठीक है, गीत की ओर चलते हैं अपन।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

का कोई भी मंगल कार्य आरंभ नहीं होता प्रभु, जिस पर भी तुम अपनी दया दृष्टि डाल देते हो उसके दुख दूर हो जाते हैं। हे लंबोदर, हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारे घर रिद्धि

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप अति बिना अपने रेडियो साथी माते दिन भैया के संग में। और दोस्तों, आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश कार्यक्रम को इतनी समापन होवे को समय हो गए। सो अपने दोस्त माते दिन भैया को तो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति। और चलत आप सुनो इन पुराने हिंदी गीतन को, लोक गीतन को आनंद। नमस्कार।

0: तुम के उतार दियो गगरी लाला दे होने का तुम्हारो के हम आई सुनो
1: के गगरी तोरी भौजी जबई उतर है गगरी तोरी भौजी

के बड़े दुख जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दी है हम सबको आनंद भैये ऐसे के रहे के गगरी उतार दिखाए

0: समाओ के वो है, तुम कह रही के दो बहने हैं, हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन से प्यारी हो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, काद हो गगरी।

0: जब बिटिया हम सब खुश रहे और दोनों कुलन की शान बढ़ावे जो ही हमें एकदम से नेगे में जाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जाना दुलारो कुल को है उजियारो अरे खुशी रहे जो लाज

क्या बनाना। ये बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये इसी जाति के लोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको उस काम को करने में रुचि

0: तो आप बिल्कुल ये सोच हटा दीजिए जातिवाद की कि ये यही जाति का करेगा, हम भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर एक मटका बनाना जानते हैं और हम कुम्हार नहीं हैं, तो क्या हम अपनी रुचि को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम उससे दो पैसे नहीं कमा सकते हैं? क्या हम अपनी रुचि को आगे ले जाकर लोगों को ये बताएं कि जातिवाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं?
1: बिल्कुल वर्षा जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे तौलिया का व्यवसाय, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि मऊ रानीपुर में सबसे ज्यादा तौलिया का व्यवसाय होता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर अपने आसपास में तो निवाड़ी में बहुत ज्यादा तौलिया का व्यवसाय चलता है। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो इस चर्चा को सुनने से पहले हम एक गीत के साथ हम आपको मनोरंजन कराते हैं, और गीत के बाद आपको सीधा हम निवाड़ी ले चलेंगे, और जहां पर हीरा लाल जी हमसे बात करने के लिए तैयार है। तो आइए इसी क्रम में एक हम गीत को सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और दोस्तों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना जिसे गा रहे थे दयाशंकर और उनके साथी।
1: जी हाँ, अब हम आपको इंतजार नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मनोरंजन के बाद हम आपको सीधा ले चलेंगे निवाड़ी हीरा लाल जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि तौलिए का व्यवसाय किस तरह से किया जाता है और क्या क्या समस्या उनको आती है और क्या क्या सावधानी इसको करने में रखनी चाहिए।
0: तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपना परिचय दें पहले।
2: हीरा लाल पूरी कालपुरा निवाड़ी।
1: अच्छा, तो हीरा लाल जी आप क्या करते हैं इस समय पर?
2: हम तौलिया के काम करते हैं, क्या मशीने लगाई हुई है पावर लूम।
1: अच्छा, तो जैसे शुरुआत बात करें अगर, तो आप तौलिया कैसे, कहाँ से इसका माल लाते हैं, कच्चा माल कहाँ से?
2: कच्चा माल आता हमारा रानीपुर से।
1: अच्छा, कैसा किस हिसाब से लाते हैं?
2: जैसे धागा है वो तो 100 रुपए किलो भी आता है, 150 भी आता है। अच्छा। हर प्रकार का धागा खरीद के फिर बेलन भी भरवाते हैं।
1: अच्छा, तो इन सब में कितना खर्चा आ जाता है?
2: आप बेलन भराई जैसे 5,000 के आसपास तो बेलन भर जाता है, और फिर धागा उसके बुनने के लिए, माल बनाने के लिए वो अलग खरीदना पड़ता है।
1: तो ये सारा सामान आपको वहीं से
2: रानीपुर मिल जाता है?
1: अच्छा, फिर वहाँ से लाने में कैसा क्या आप
2: लाती क्या है? जैसे इधर से गाड़ी जाती है, गाड़ी में आता है माल।
1: गाड़ी में आता है, फिर वो धागा यहाँ लाने के बाद आप क्या करते हैं?
2: उसका धागा ले जाने के बाद पावर लूम पे जैसे बेलन रख दिया और धागा हाथ से गाड़ी भरती है, उसके बाद बस पावर लूम पे काम करो, कपड़ा बनने लगता है।
1: कपड़ा बने? कितने लोगों को आप लगाए हुए हैं?
2: हम जैसे एक मजदूर लगाए हुए, एक खुद करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए आप नहीं करते तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी?
2: जैसे 2 लोगों की पड़ेगी, जैसे 3 पावर लूम लगाए हुए हैं, घर का धंधा है ये।
1: अच्छा,
2: ज्यादा तो लगाए नहीं हुए हैं, जैसे ज्यादा लगाओ मशीन है तो ज्यादा मजदूर लगेगा।
1: अच्छा,
2: 3 पावर लूम लगी हुई है तो 2 मजदूर चल जाते हैं।
1: तो एक दिन में कितना आप बना लेते हैं तौलिया की बात करें तो?
2: एक दिन में तौलिया बन जाती है 40 एक मशीन पे।
1: एक मशीन पे 40
2: 40 तौलिया बनती है,
1: पूरी कंप्लीट हो जाती है?
2: कंप्लीट हो जाती है।
1: अच्छा, और एक महीने में?
2: एक महीने में आप इसका हिसाब लगा लो, जैसे 40 लगी एक दिन में तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा। ये तो पहले का है, थोड़ा कभी लाइट भी नहीं रहे, कहीं कुछ वजह है, हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता।
1: और जो मशीन आप लगाए हैं उसमें लाइट का कैसा क्या कनेक्शन आपने करवाया?
2: हमारा कनेक्शन है 3 फेज का कनेक्शन कराई। हाँ,
1: तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है? जैसे आप कनेक्शन भी करें वो भी बिल भरना पड़ता है?
2: हाँ, क्या नहीं मिलता, वो तो इतना तो मिल ही जाता है यदि परिवार चलाने।
1: अच्छा, अपना परिवार चलाने। और जो व्यक्ति आपके यहाँ लगा हुआ है मजदूर,
2: उसका भी परिवार चल जाता है?
1: कितना उसको देते हैं?
2: उसको जैसे उसका हो जाता है 6 दिन में 1,500 के आसपास का।
1: अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे तौलिया बनाने से पहले?
2: तौलिया बनाने के से पहले क्या, जैसे पहले तो हम जैसे कोई दुकान टेलरिंग की खोले थे मार्केट में, सिलाई का काम करते थे। फिर दिमाग में आया कि पावर लूम लगा लो घर में, तो पावर लूम लगा लिए।
1: अच्छा, तो मशीन आप जो लाए थे वो कहाँ से लाए थे जी पावर लूम?
2: जी, मशीन ऐसा है कि जैसे इधर की इधर व्यक्ति रहती है, कोई नहीं करता है धंधा, कोई कुछ और बदल देता है, इधर की इधर मशीनें मिल जाती हैं।
1: अच्छा, नहीं तो अगर जैसे किसी को खरीदना हो जी मशीनें तो कहाँ से?
2: तो ये टांडा वगैरह जाना पड़ेगा, टांडा में है।
1: ये कोई समूह के द्वारा मिलती है या फिर?
2: हाँ, ये समूह के द्वारा भी मिलती है, अभी रानीपुर में जो है यूपी में आपको सरकार ने दी है 64 की मशीनें बड़ी बड़ी, और मकान बनाने के लिए लगाने के लिए व्यवस्था पैसा दिया है, 2-3 लाख रुपया दिया है। ये समूह द्वारा भी मिलता है, सरकार भी दे देती है।
1: तो समूह द्वारा अगर कोई लगाना चाहे तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे?
2: हाँ, समूह द्वारा
1: सरकार पैसा देती है।
2: हाँ, उससे ज्यादा मशीनें मिल जाएंगी, उसको पूंजी भी मिल जाएगी, वो घर का बिजनेस करने लगेगा।
1: अच्छा, अब आपकी मार्केटिंग की बात अगर करें तो आपका बाजार कहाँ होता है, आप कैसे इसको बाजार में सेल करते हैं?
2: हम लोगों की मार्केट ये

0: है कि व्यापारी बने हुए हैं बाहर के, तजरी से गांठे पैक होके चली जाती है, तैयार होके माल
1: पूरी कंप्लीट या फिर
0: पूरी कंप्लीट मैं फ्रेश फिनिशिंग होके तैयार पक्की बन जाती है। बाहर जाता है, राजस्थान जाता है, भोपाल चला जाए, बहुत जगह जाता माल तो।
1: अच्छा, तो आपको महीने में कितना इसमें प्रॉफिट हो जाता है?
0: महीने में वो ये 15-20 हजार रुपए की कमाई परिवार चलाने लगभग।
1: अच्छा, इसके अलावा आप और क्या करते हैं?
0: बस इसके अलावा क्या है, वही काम है।
1: अच्छा, कितने घंटे आप देते हैं इस काम में?
0: इसमें पूरा लगा रहते हैं, वो तो 10 घंटे करीब काम देना पड़ता है।
1: जैसे सुबह से उठे तो सीधा
0: बस उसी में वही काम है और है क्या।
1: अच्छा, अगर कोई और लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए?
0: और कोई लगाना चाहे तो सावधानी क्या, उसको पावर लूम चलाना सीखना पड़ेगा, जैसे नहीं जानता है तो उसको सभी सीखना पड़ेगा, धागे का काम है।
1: अच्छा,
0: तैयारी का काम है।
1: आपकी बात अगर करें तो आपने कहाँ से सीखा, कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी?
0: ट्रेनिंग क्या, हम इस काम को नहीं जानते थे, जैसे पावर लूम लगा लिए, कारीगर लोग कर रहे हैं काम, सुधारना भी नहीं जानते थे मशीन, तो वो धीरे धीरे कारीगर लोग चलाए, हम भी सीख गए।
1: आपने पहले कारीगर लगाया?
0: कारीगर लगाया, उनने किया काम, जैसे बिगड़ गई मशीन तो मिस्त्री बुलाया, मिस्त्री को देखा ये किस प्रकार सुधारता है, तो अपन देखते देखते अपन भी होशियार हो गए।
1: अच्छा, जैसे कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें आती है, तो आपको ऐसी क्या क्या परेशानी आई?
0: बहुत सी परेशानी आई थी हमको, जैसे उसमें कुछ जानते ही नहीं थे, थोड़ा भी कुछ बिगड़ जाए, थोड़ा चमड़ा टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो मिस्त्री को पकड़ते थे, उसको पैसा देना पड़ता था।
1: अच्छा, और अब अगर बिगड़ जाए तो?
0: अब तो खुद कर लेते हैं, सब
1: खुद कर लेते हैं। अच्छा, सब समझ हो गई है?
0: सब समझ हो गई है।
1: अच्छा, इसमें जगह कितनी की जरूरत पड़ेगी, जैसे अगर कोई लगाना चाहे तो उसको जगह की कितनी जरूरत पड़ेगी?
0: जगह के लिए शायद कोई 2 मशीन लगाना पड़े या 3 लगाए 6 लगाए, उस हिसाब से जगह लगती है। जैसे 12x12 के कमरे में 2 मशीनें लगती है, समझ लो आप, और ज्यादा मशीन है तो उस हिसाब से जगह चाहिए।
1: तो अभी आप 2 मशीनें लगाए?
0: हम 3 लगाए हुए।
1: और अगर कोई खुले माल में आपसे लेना चाहे, जैसे 1 तौलिया 2 या 3 4 5 ऐसे में आप बेचते हैं?
0: दे देते हैं।
1: कितने की 1 तौलिया जाती है?
0: जैसे तौलिया कपे के ऊपर है, 12 रुपए की भी, 15 की भी है, 35 की भी है, ये तो वेरायटी अलग अलग
1: है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार।

0: साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आपने इस बातचीत को सुना और जो हीरा लाल जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं तौलिया का व्यवसाय करके, तो हमें भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाना चाहिए।
1: हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तौलिये का ही व्यवसाय करना चाहिए। इससे मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आपको किसी भी काम को करने में अच्छी लगन हो, अच्छी पकड़ हो, आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वो काम खुद का होना चाहिए, तो आप वो जरूर करें और हो सकता है कि उसमें हम आपकी थोड़ी सी मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और मदद करने के लिए चूंकि आपको लगता है कि हमें परेशानी आ रही है ट्रेनिंग्स के लिए, तो बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्था हैं जो ट्रेनिंग्स इन सारे व्यवसायों के लिए कराती है, तो आप जुड़िएगा हमसे बात करिएगा और इस व्यवसाय संबंधी बातचीत करने के लिए हम आपको फोन नंबर दे देते हैं। फोन नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
1: श्रोता साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि रेडियो बुंदेलखंड बार बार आजीविका से जुड़ी हुई बातों पर क्यों जोर दे रहा है, तो आपको बता दें कि हम देख रहे हैं कि जब हम फील्ड पर जाते हैं नुक्कड़ नाटक या नैरो कास्टिंग के माध्यम से, तो देख रहे हैं कि अपने गांव में जितनी जनसंख्या पहले थी अब वो नहीं है। हुआ क्या है कि वो लोग पलायन कर गए हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए दिल्ली चले गए हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा आखिर, हम लोग कब तक दूसरों की मजदूरी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें बाहर जाने से कितनी समस्या होती है, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो उन्हें कितनी बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आज मजदूरी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी ही करें, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगे तो हो सकता है वो कुछ अच्छी नौकरी करें या फिर अपना खुद का धंधा करें या रोजगार लगाएं कुछ भी। तो इसीलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं कि आप अपना खुद का व्यवसाय लगाइए और अपनी आजीविका को अच्छे से चलाइए।
0: बिल्कुल वर्षा जी, आप एक बात हम इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि हम आप देखते हैं कि जब हम दूसरों की मजदूरी करने के लिए यानी यहाँ से हम पलायन करते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो शिक्षा पर, उनकी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम बिल्कुल आपकी बात से सहमत

0: कि बच्चों पर सबसे खासा असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि मजदूरी का बेटा मजदूर ही करेगा, यानी मजदूर करने वाला व्यक्ति का बेटा मजदूर ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मजदूर करने वाले का बेटा इंजीनियर बन सकता है, मजदूर करने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, सारे जो रहते हैं मजदूर करने वाले लोग आगे चलकर बड़ा अपना अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अपने पढ़ाई का स्तर जो रहता है, हम और आप देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर जो अब हम बुंदेलखंड को देखें तो बच्चे जो मजदूर करने के लिए चले जाते हैं साथ में, तो उनका पढ़ाई का स्तर बहुत ही कम हो जाता है। तो अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत सारी समस्या आती है।
1: जी हाँ साथियों, तो इसीलिए हमारी बात पर गौर फरमाइएगा कि हम जो आजीविका कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ये आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, इस पर हमें जरूर अपने सुझाव और फीडबैक दें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए आप पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम और छतगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय होता है, लेकिन आप अपने सुझाव, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो या फिर आपने भी इससे कुछ सीख ली हो, अपने जीवन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव किया है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, तो हमें जरूर बताएं, हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी सबको सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

0: कार्यक्रम मुझे हक है कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड 90.4 और हमारे साथ हैं हमारे रेडियो साथी
1: मनीष। और साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे हक है, क्योंकि मुझे हक कार्यक्रम जैसा ही नाम है वैसा ही इसका काम है, क्योंकि मुझे हक है, मुझे
0: समझ
1: हक
0: रहे
1: है जानने का,
0: मुझे हक है पहचानने का और मुझे हक है जो मेरे लिए योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ लेने का।
1: बिल्कुल वर्षा और सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम मुझे हक में बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और श्रोता साथियों को फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारे साथियों के साथ, क्योंकि काफी दिनों से मुझे हक कार्यक्रम में हम योजना पर बात नहीं कर रहे थे, और हम आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी, आप उनके मन में एक ही सवाल चलता है कि हमें साहब योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल, और देखिए होता क्या है, सरकार हम सबके लिए, हम बेरोजगार साथियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती रहती है हमेशा समय समय पर, जिनका लाभ हमें मिल जाए और जिसकी वजह से हमें एक छोटा सा कुटीर उद्योग ही टाइप कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना आय चला सकें।
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि हम और आप ये देखते हैं कि जब आजीविका की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो ये सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे रोजगार हम करेंगे, और साथ में ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है हमारे साथियों के मन में चलती है कि क्या काश हमारा ये रोजगार हम जो लगा रहे हैं, जो हम व्यवसाय डालने जा रहे हैं, वो व्यवसाय चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन इसके लिए एक उपाय है, हमारे पास उपाय है, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाए जा रहे हैं। यदि आपके पास रुचि है, यदि आपके पास हुनर है, आप ये देखते हैं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं और अपनी हुनर बताते हैं कि साहब हमें ये काम बहुत अच्छा आता है, चाहे वो ऑटो पार्ट्स की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान हो, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग रहते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसके कारीगर आप स्वयं रहते हैं, लेकिन समस्या आती है कि हम अपना स्वयं का व्यवसाय नहीं डाल पाते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं।
0: अरे अरे मनीष जी, अभी आप सारी बातें बता देंगे तो हमारे श्रोता साथियों को पता कैसे चलेगा कि आज इस मुझे हक है कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं। तो पहले हम बता देना चाहते हैं कि आज श्रोताओं मुझे हक है कार्यक्रम में हमें जानने का हक है कि हम सुनेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरी जानकारी कि किस तरह से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कैसे हमारे बेरोजगार साथी जो हैं वो इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।
1: लेकिन वर्षा, हमें लगता है कि एक गीत संगीत हो जाए।
0: अरे मनीष जी, आप बस सुनते ही नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। हम वही बताने वाले हैं कि हम जानकारी लेंगे, साथ में कुछ गीतों के साथ मनोरंजन भी करेंगे और कुछ हम और आप मिलके अपने श्रोताओं को कुछ और नई जानकारी भी देंगे, ताकि हमारे साथी कहीं भटके ना और इस योजना तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक गीत सुनना है, बिल्कुल चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक बढ़िया सा लोक गीत।
2: लड़का पारे बदाम मांग रहे

अपना रेडियो अपनी बातें। रेडियो बुंदेलखंड पर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये मधुर सा गीत और जिसे गा रहे थे पन्ना लाल अहिरवार और उनके साथी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम जो योजना के बारे में जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में, उस योजना के बारे में जानते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा मनीष जी के पास।

0: इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं उद्योग विभाग के अधिकारी। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि उद्योग विभाग की ओर से कौन सी संचालित योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से उसका लाभ लिया जाता है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा।
1: जी, मेरा नाम हितेश ठाकड़ है और मैं उद्योग विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ टीकमगढ़ में।
0: तो सर उद्योग विभाग की तरफ से कौन सी योजना संचालित की जा रही है?
1: वर्तमान समय में शासन की 4 योजनाएं हैं जो उद्योग विभाग संचालित की जाती हैं।
0: जी,
1: चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पहली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
0: जी,
1: इसके अंतर्गत आपको 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए।
0: जी,
1: इसके अलावा आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
0: जी,
1: ठीक है। इसमें राशि की बात करें तो इसमें 50,000 से लेकर 10,00,000 तक की राशि आपको आपके व्यवसाय सेवा तथा उद्योग के पर्पज से आपको दी जाएगी। इसके अलावा हमारे आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन है। आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना है तथा इसका प्रिंट आउट हमारे जिला कार्यालय टीकमगढ़ में आपको जमा करेंगे।
0: इसको ये मध्य प्रदेश में का मूल निवास।
1: जी, इसके लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके पास 5वीं की मांग सूची होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त एक आवेदनकर्ता के पास अपने पास होने चाहिए।
0: अच्छा, उस फॉर्म में जब फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कार्य योजना किस तरीके की आपको पूछा जाता
1: है? जी, इसमें क्या है, एक कार्य योजना का प्रारूप होता है, 2 पन्ने का ये प्रारूप है। वो आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि आवेदक द्वारा ये भरी जाए, लेकिन किंतु कई आवेदक इसे नहीं भर पाते, इसलिए ये कार्य योजना हम अपने विभाग में अपने ऑफिस में भरते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कार्य योजना ना भर पाए तो आप हमारे विभाग में संपर्क करके पहले वो कार्य योजना बनवाएं, फिर ऑनलाइन उसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी आवेदन में, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पता, और आप किस बैंक के लिए आवेदन कर रहे हो उसको आपको आवेदन में ऑनलाइन भरना पड़ेगा, जिससे जब आप आवेदन करोगे और जमा करोगे तो हम अपने विभाग से उसी बैंक के लिए स्वीकृत करके आपका आवेदन प्रेषित करेंगे।
0: अच्छा, ये सर उद्योग विभाग जब स्वीकृत भेजता है अपना डेटा तो कौन कौन से बैंकों को जाता है? कैसे?
1: ये इसमें सभी प्रकार की राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है, वो भी शामिल हैं। लेकिन

0: इसमें एक क्लॉज रहता है कि सीजीटीएमएससी करके जो प्राइवेट बैंक इसमें कवर नहीं होती हैं, इसीलिए प्राइवेट बैंक आमतौर पर ये केस नहीं करती हैं। जबकि जो शासन की जो सभी समस्त बैंक है, ग्रामीण बैंक से लेके कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, जो भी समस्त समस्त शासकीय बैंक है, वो सब इस योजना के अंतर्गत अपने अपने काम करती है।
1: अच्छा, तो ये चीज और बताइए, जैसे उसका आवेदन भर गया है, उसने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया है, तो कितने दिन बाद उनको ये राशि प्रदान हो जाएगी, क्या उसकी प्रक्रिया क्या रहती है?
0: जी, जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और जो भी योजना हमारे विभाग से चल रही है, वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कवर है। इसके अंतर्गत अधिकतम 30 दिवस के अंदर हमें उस पर एक्शन लेना होता है और बैंक को प्रेषित करना होता है। अतः आप जब जिस दिनांक से आवेदन जमा करते हो, उसके अगले 30 दिवस के अंदर हम आपके आवेदन पर निर्णय लेते हैं, इसे स्वीकार किया जाए या आगे भेजा जाए, तथा इसकी सूचना आपको मोबाइल से भी दी जाती है। और इसमें लगभग न्यूनतम 30 दिवस आप समझिए।
1: बहुत सारे सर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग जब हम फील्ड पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भी भर दिया था, उद्योग विभाग में जमा भी कर दिया था, लेकिन अभी तक हमारी स्वीकृति नहीं आई है, तो क्या उसका कारण रहता है?
0: जी, कारण इसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं मिसमैच हो गया हो आपका फॉर्म हार्ड कॉपी, जैसे आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे आपको लगता है कि आपको बहुत दिन हो चुके हैं, तो आप मोबाइल से या व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हो, आपकी समस्या जो भी उसका निवारण किया जाएगा।
1: जी, और इसके बाद जब बैंक के पास जाता है तो बैंक कितने दिन में उसको स्वीकृत कर देगी?
0: देखिए, बैंक के लिए एक डेडलाइन तो फिक्स नहीं है
1: जी।
0: लेकिन आमतौर पर बैंक अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ही कर देता है। अब कितना वो टाइम लेते हैं वो हर बैंक का अलग अलग रहता है, इसलिए इसकी जानकारी बैंक वाले ही बता पाएंगे।
1: अच्छा, इसमें ये रहता होगा कि आवेदक जो है यदि बैंक से वो कर्ज लिए हो तो क्या उसकी स्वीकृति हो जाएगी?
0: जी जी, बिल्कुल नहीं। आवेदक को बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, उसी बैंक का नहीं, किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको लोन दिया जाएगा उससे पहले आपका एक नोटिस लगेगा कि आप डिफॉल्टर तो नहीं हो, तो आवेदक अगर डिफॉल्टर है तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा, वो अपात्र हो जाता है।
1: और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होकर बैंक भी स्वीकृत कर देता है तो क्या डायरेक्टली उसके पैसा एक खाते में जाता है कि जो वो सामान खरीदना चाहता है उसके?
0: जी, इसके बारे में भी हमारे विभाग ने प्रावधान किया है, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका एक समाधान ढूंढा गया है कि जब आप कोटेशन लगाओगे, जैसे मान के चलिए आप जनरल स्टोर खोल रहे हो, उसके लिए आपने सामान लाओगे कहीं ना कहीं से, तो वहां का आप कोटेशन लगाओगे, बिल लगाओगे, तो जब बैंक में वो बिल जमा करोगे आप, तब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा। जब वितरण की बारी आएगी तो जो वितरण की राशि होगी वो सामने वाले के खाते में जाएगी जहां आपने कोटेशन लगाया है। आपको एक सेल लेटर मिलेगा जिससे आप उस सेल लेटर को वहां लेके जाइए और वो आपको सामान दे देंगे उतने मूल्य का।
1: अच्छा,
0: तो ये इसकी प्रक्रिया रहती है। आपको नगद राशि उतने सामान की नहीं मिलेगी।
1: अच्छा,
0: आपको जो अन्य खर्चे हैं जैसे काउंटर फर्नीचर या जो आपका सीसी लिमिट चलता है बैंक में, उसके लिए आपको नगद राशि मिलेगी, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा सामने वाले के अकाउंट में जाएगा।
1: अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी ने उद्योग विभाग से अपना लोन पास करवाया है और बैंक ने भी लोन पास कर दिया है, तो क्या उसको पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी कि कुछ उद्योग विभाग उसमें छूट देगा?
0: जी जी, इसके लिए देखो, शासन ने जो हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको प्रोत्साहन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें हर योजना में अलग अलग चार स्कीमें, मैं उसका अलग अलग बताऊंगा। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात करें तो इसमें जो सामान्य पुरुष है उसको 15%, इसके अलावा वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, मान के चलिए एससी है, एसटी है, ओबीसी है, विकलांग है, अल्पसंख्यक है और महिला है, इन सभी को 30% परियोजना लागत का 30% शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी दी जाती है। आपको जो राशि आपकी है उसमें से 30% घटा के आपको बाकी रुपए बैंक को जमा करना है, जो 30% वो आपको प्रोत्साहन रूप आपके कार्य के लिए दी जाती है।
1: अच्छा अच्छा, और सर ये कितने दिन में उसको जमा करनी पड़ेगा?
0: देखिए, ये तो ये बैंक का मैटर है, लेकिन इसमें फिर भी मैं बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसमें अधिकतम 7 वर्ष रहता है और मिनिमम 6 माह रहता है। इस बीच की अवधि में बैंक आपकी किस्त बनाएगी आपकी सहूलियत से हिसाब से आपको पूछ के, तो अधिकतम 7 वर्ष रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, 7 वर्ष के अंदर आपको चुकाना है।
1: और यदि बैंक से वो लोन लेकर वो फेल हो जाता है अपने उद्योग लगाने के बाद, तो क्या उसकी क्या हो रहा है?
0: देखिए, फेल होने पर पहली बात तो जो आप जिसके लिए उद्योग लगा रहे हो पर या जिसके लिए आप मुझे ऋण ले रहे हो वही उसकी गारंटी होता है पहली बात, तो अगर आप फेल होते हो तो वही जब्त होगा सबसे पहले। आपने दुकान लगाई तो उसका सामान, कोई भी चीज आप लगाई तो उसका सामान, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब आप फेल होते हो या डिफॉल्टर होते हो, इसके लिए भारत शासन की एक स्कीम है जिसे सीजीटीएमएससी करके बोलते हैं, उसमें क्या है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें रजिस्टर होती हैं। मान के चलो अनफॉर्चुनेटली कोई उद्यमी डिफॉल्टर हो जाता है तो बैंक अपना जो डिफॉल्ट किया हुआ पैसा है वो वहां से कवर करती है
1: जी।
0: अच्छा, ये ऐसा प्रावधान किया गया है।
1: अच्छा अच्छा जी। और यदि किस्त उसकी चूक जाती है तो क्या रहता है?
0: किस्त चूकने पर पेनल्टी लगती है
1: जी।
0: उनका कुछ परसेंटेज रहता है बैंक का, 0.2 या 0.5 जो परसेंट रहता है, इस हिसाब से पेनल्टी लगती है।
1: अच्छा अच्छा। और इसमें उद्योग विभाग का कोई रोल नहीं रहता
0: जी? नहीं, उद्योग विभाग का रोल यहाँ तक सीमित है कि वो आप जब आवेदन करोगे आपके आवेदन को स्वीकृत करेगा, बैंक प्रेषित करेगा, अगर बैंक आपका लोन वितरित कर देता है तो आपकी जो एलिजिबल मार्जिन मनी है, जो सब्सिडी जिसे बोलते हैं, वो हम रिलीज कर देंगे।
1: अच्छा जी। इसमें कोई गारंटर रहता है?
0: जी, गारंटर देखो बेसिकली शासन की जो गाइडलाइन है उसमें गारंटर का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों के हमारे संज्ञान में आया है कि उनके कुछ इंटरनल सर्कुलर हैं जिसके तहत उन्हें गारंटर की आवश्यकता होती है, तो ये हर बैंक का अलग अलग रहता है, तो ये वही अच्छे से बता पाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आपने जो जानकारी सुनी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जानकारी आप सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है?
1: बिल्कुल वर्षा, क्योंकि ये जानकारी उन युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं। आप घर पे ही अपना स्वरोजगार लगा सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं और बहुत ही कम पूंजी में, बहुत ही कम लागत में ऐसे ऐसे टिकाऊ रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सस्ते रोजगार हैं जिसको हम घर बैठे कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सवाल आता है कि अब पैसे कहाँ से, तो ढाकड़ जी ने हमारे बता भी दिया है कि जो पैसे वो उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है, वो उद्योग विभाग स्वीकृत कर देता है आपके आपके परियोजना को और वो परियोजना बैंक में जाकर स्वीकृत हो जाती है और आपको एक आसान तरीके से ऋण उपलब्ध हो जाता है और आप अपने स्वयं का जो आपने सोच रखा है उस व्यवसाय को करने में आपको मदद मिलती है।
0: मनीष जी, यहाँ पर हमारे जो श्रोता साथी हैं थोड़ा सा नर्वस तब हो जाते हैं जब वो कहीं प्रयास करते हैं और वो प्रयास सफल नहीं होता है। तो अभी जैसा कि धाकड़ जी ने बताया है कि कई बार क्या होता है कि फाइल यहाँ वहाँ हो जाती है और हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो जिस चीज को कहते हैं कि बार बार उस चीज के बारे में हम पूछते रहें। मान लीजिए अगर किसी को हमने पैसा दिया है या कोई चीज हमने दी है तो हम उससे बार बार पूछते रहते ना कि भैया वो चीज ऐसी थी, वो कहाँ गई, या फिर हमने आपको वो पैसा दिया था वो अब कब लौटा रहे हैं, क्या कैसा। तो उस चीज की स्थिति जानने के लिए हम उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, उसको फोन करते हैं या जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमें उसका फॉलो अप जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप गए, आपने इस योजना की जानकारी ली, इसका फॉर्म डाला और बैंक में या उद्योग विभाग में जाके आपने सबमिट किया और उसके बाद आके आप फ्री होकर घर पे बैठ गए। अब आप सोचेंगे कि उद्योग विभाग वाले खुद आएंगे और वो हमसे पूछेंगे कि भैया आपने किसके लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है, आप भी एक दो बार वहां पे जाइए और पूछिए उनसे कि साहब हमने जो फाइल दी थी उसका क्या हुआ, कब तक आगे बढ़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके एक तो क्या होगा कि उद्योग विभाग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे क्योंकि जान पहचान बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ने से आसानी से लोग आपको पहचानने लगेंगे। तो आपको कहीं से भी कैसे भी करके किसी न किसी योजना से जोड़ दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा।
1: एक हम अपने श्रोता साथियों को सलाह और देना चाहते हैं, जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता है कि हमारे श्रोता साथी अपने मन में जो आपकी इच्छा है कि हमें इस व्यवसाय को करना है, उसके लिए आप जो सरकार द्वारा, जैसे हमने स्वरोजगार योजना के बारे में बताया है, उसकी सबसे पहले वहां जाकर संबंधित अधिकारी के पास पहले जो गाइडलाइन रहती है उसको पढ़ लेना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि बहुत सारे साथी सोचते हैं कि सभी को लोन उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। उसके लिए भी कुछ कैटेगरी बनाई जाती है, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कितना पैसा, कितना छूट, ये सारी परियोजना में लिखा रहता है और उसी हिसाब से आपको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ऋण उपलब्ध हो जाए, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमें पढ़ लिख कर पूर्ण रूप से तैयार होकर तब हमें एक डिमांड करनी चाहिए, तब हमें मांग करनी चाहिए, तब हमें आसान तरीके से वो ऋण आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसान तरीके से आप अपने व्यवसाय लगाने में आप सफल होंगे।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है, इस बात पे हम भी थोड़ा सा और कहना चाहेंगे क्योंकि कई बार होता है जब हम बैंकों में जाते हैं तो बिना पढ़े ही हम किसी भी कागज पे दस्तखत कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम पढ़ने में

0: समय व्यस्त करेंगे तो वो हमारा समय बेकार जाएगा या हम कहीं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी हम ऐसी किसी योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ते हैं, तो उस योजना के बारे में आपको एक एक जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है। आप उस योजना को अच्छी तरीके से पढ़िए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका समय वहां पे बेकार जाने वाला है। तो इसलिए पहले से ही आप उसकी जानकारी ले लें ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो। और जहां तक बात होती है पैसे की, तो मनीष जी देखिए, जब हम एक बार ठान लेते हैं कि हमें ये व्यवसाय या कुटीर उद्योग कुछ भी खोलना है, अपना स्वयं का व्यवसाय करना है, पैसा सिर्फ एक माध्यम होता है, ना कि रुकावट बनता है। तो आप सारी जो तालमेल होती है, जो भी और व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, उनको एक साथ रखिए। पहले पैसा एक बाद की चीज होता है, पैसा आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, किसी ना किसी योजना से आपको जोड़ ही दिया जाएगा, अगर आपके पास लगन अच्छी है, मेहनत अच्छी है, आप वाकई में चाहते हैं कि आप कोई उद्योग खोलना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है जो चीज, वो होती है प्लानिंग, मार्केटिंग और आपका लगन। आप कितनी लगन से उस काम को करने में लग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और इसी के साथ, क्योंकि अब हमारे घड़ी और हमारा कार्यक्रम अब हमें इजाजत नहीं देता है कि आगे भी आप बने रहें, क्योंकि बहुत सारी बातचीत भी हो गई है और योजना के बारे में श्रोता साथियों को पता भी चल गया है। तो हमें आशा है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमें कॉल लगाकर पूछेंगे, जानकारी लेंगे या फिर अपने सुझाव जरूर देंगे कि हमने इस योजना के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाकर हमने फॉलोअप किया, हमने बातचीत की। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम सुनकर हमारे श्रोता साथी जरूर इस बात पर बिल्कुल अमल रहेंगे कि हमें इस योजना का लाभ लेना है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी अब हमसे कह रही हैं कि चलिए आपका समय हो गया है, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी हमारा आने ही वाला है। तो श्रोताओं, हम चलते हैं इस कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आप सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनमें अगर आपको लगता है कि और बेहतरीन तरीके से कैसे इन्हें डिजाइन कर सकते हैं, कैसे इन्हें आप सबके लिए ला सकते हैं, आप सबके लिए कैसे ये एक लाभदायक कार्यक्रम बना सकते हैं हम, उसके लिए आप हमें सुझाव जरूर दें। और सुझाव देने के लिए हमारा नंबर वही है
1: 9219207749।
0: तो अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैवे बारे हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। जी हाँ सखियों, आप तो जानती हेंगी कि अम्मा के चौके में अपन और जो बातचीत को करत हेंगे, वह बातचीत अपने किचन से जुड़ी भई तो होती हैगी, एक साथ में रेसिपी से जुड़ी भई होती हैगी कि कोनो बढ़िया सी रेसिपी बनावो अपन और सीखत हेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सब में ध्यान देवे वाली बात जा होती है कि अपन साफ सफाई के ऊपर भी विशेष तौर से ध्यान दे देंगे कि साफ सफाई काय जरूरी है अपने लाने, उन चीजों को भी तना गौर अपन और करत हेंगे। और कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगत है जब अपनी सखियां जुड़ के और अपने संगे अच्छी तरह से कार्यक्रम को सुनती हेंगी, साथ ही में फीडबैक भी कार्यक्रम के देती हेंगी। अपने संगे बहुत सारी ऐसी सखियां हेंगी, अब तो आपको बता देवे कि अपनी सखियां इतनी होशियार हो गई हेंगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी रेडियो बुंदेलखंड को सुनन लगी हेंगी। तो हम उन सब सखियन को बहुत ही शुक्रगुजार हेंगे और उनको धन्यवाद करत हेंगे कि वे अपने संगे जुड़ती हेंगी, साथ ही में अपन को फीडबैक भी देती हेंगी। ये कार्यक्रम में आगे आपको बता देवे कि जो भी हमारे श्रोता साथी कार्यक्रम को सुनत हेंगे या एक फीडबैक हम तक पहुंचाउत हेंगे, तो आपसे भी एक अनुरोध हम करवो चाहते हेंगे कि अगर आपके मन में भी कोनो अच्छी सी रेसिपी या फिर कोनो भी बढ़िया सी बात अपने मन में चल रही हैगी कि अरे जो चीज हम बहुत अच्छी तरह से बना लेते हेंगे और इको हमें रेडियो पे जरूर बताना चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक होकर फोन लगा सकती हेंगे। जी हाँ सखियों, और आज के कार्यक्रम में अपन मीनाक्षी राय जी की किचन में चला थेंगे, उनकी रसोई घर में चला थेंगे और देखा थेंगे साफ सफाई के माहौल को देखत भय भी अपन को का ऐसो बता रही हेंगे जी के बारे में अपन उनसे जानवी के लाने गए हेंगे उनकी किचन में। तो आज हम चला थेंगे मीनाक्षी राय जी की किचन झांसी में, तो आपको सुनवाते हैं उन्हें की मुख जुबानी से कि वे अपनी किचन में का बना रही हेंगे। चला थेंगे मीनाक्षी जी के पास।

0: सबसे पहले तो नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी राय.
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आज हम आपकी किचन में आए हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या बना रही हैं.
1: मैं आज चने की दाल और सोयाबीन के कबाब बना रही हूँ.
0: अच्छा कबाब. वाओ, कबाब सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है. इसकी थोड़ा सा आप कैसे बनाती हैं इसके बारे में हमें बताइए.
1: चने की दाल को आप एक कटोरी लेकर
0: जी
1: और उसको रात भर सोख कर दीजिए.
0: भिगो के रखना.
1: हाँ, भिगो कर रखना है. और न्यूट्रिला अगर चाहे तो न्यूट्रिला की जो बड़ियां मिलती हैं वो बड़ियों को आप रात में भी भिगा के रख सकते हैं. नहीं तो जब आप कुकर में डालो तो कुकर में चने की दाल 2-3 पानी धोने के बाद रात भर भीगी हुई दाल उसको डालकर उतना पानी डालेंगे जितनी दाल उसमें भीग जाए. ज्यादा पानी नहीं होगा. उसी में न्यूट्रिला वाले सोयाबीन की बरिया डालकर और उनमें सारे खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची और गरम मसाला, नमक, मिर्च और दालचीनी, जावित्री, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा में और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसको आप बॉयल कर ले. 4-5 सीटी लगा लें जब उसे बिल्कुल मिल जाए. उसके बाद उसको निकाल कर उसको मिक्सी में पीस लेंगे.
0: अच्छा, ये जो आपने इसमें गरम मसाला इस्तेमाल किया वो खड़ा गरम मसाला?
1: हाँ, खड़ा मसाला. थोड़े थोड़े गरम मसाले डाले जिससे उनका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है, उनकी जो खुशबू है वो ज्यादा अच्छी पता चलती.
0: और फिर हमने उसको मिक्सी में डाल के
1: जब वो हमने बॉयल करा उसके बाद वो क्योंकि इतना पानी हम डालते हैं कि उसी में मिल जाए.
0: जी,
1: ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बहता हुआ हो जाएगा, वो नहीं होगा, बस उतना पानी उसमें मिल जाए.
0: अच्छा, चने की दाल और जो बरी हमने ली थी सोयाबीन की, वो
1: दोनों ही बॉयल करेंगे. 4-5 सीटी बॉयल करेंगे. उसको बॉयल करने के जब वो ठंडा हो जाए उसको मिक्सी में चला दीजिए और चलाने के बाद उसको निकालेंगे. उसमें थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच बेसन डाल दीजिए. थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालते हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे. और उसमें महीन प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और धनिया, ये सब डालकर उसको मिला लेते हैं, बाइंड करेंगे. अगर देखेंगे हम बाइंड करने में अगर नहीं आ रहा है बाइंड करने में तो हम ऐसे भी उन जो उसको रिफाइंड में कढ़ाई में रिफाइंड डालेंगे और रिफाइंड डालने के बाद उसको हम उसी में चलाएंगे काफी तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है. उसके बाद उसकी अगर हम वो बनाते हैं गोली गोल लोई बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं. और उनको फिर हम सेकते हैं और लहसुन धनिया मिर्ची चटनी के साथ बढ़िया सर्व करिए. ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए बढ़िया.
0: अच्छा, इसमें आपने जो चटनी का इस्तेमाल किया आपने कहा लहसुन धनिया की, तो वो आप कैसे बनाती हैं थोड़ा सा उसके बारे में?
1: धनिया लहसुन अगर हरा लहसुन हो तो बहुत अच्छी चटनी बनती है. हरा धनिया और आजकल फूल वाला जो धनिया आ रहा है उसमें धनिया और लहसुन की एक आप एक ही बस वो डालेंगे, एक लहसुन का आप हरा वाला डाल दें तो उसमें और हरी मिर्ची, जितना तीखा खाते हो तो ज्यादा मिर्ची डालिए और कम तीखा खाते हो तो कम मिर्ची डालिए. और उसको मिक्सी में मगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, जगह थोड़ी सी दरबरी जो पिसती है ना तो उसका स्वाद ज्यादा अच्छा आता है.
0: अच्छा, क्योंकि वो उसमें ना जो हमारा सिल लुड़िया वाली
1: थोड़ा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि आप महिलाएं मोस्टली काहिल होने लगी है इसलिए तो चलती है मिक्सी. वैसे सिलबट्टे पे अगर पीसी जाए तो उसका मजा और अच्छा,
0: बहुत ही अच्छा आता है. और खासतौर से हमने देखा है कि जब हम खेत पे जाते हैं और वहां पे ना तो हमारे पास क्या कहते हैं मिक्सी होती है ना कुछ होती है, एक सिंपल सा पत्थर भी अगर रखा है और उसपे पीस के भी खाते हैं ना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वो एक अलग ही चीज होती है. इसको बनाते समय जब आप कबाब बनाती हैं तो क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए?
1: बस पानी जो हमने करा है वो कुकर में जो पानी रख रहे हैं उसको हम इतना रखेंगे, ज्यादा पानी नहीं रखेंगे. जनरली क्या है, लोगों ने डाला, एक उठाया और 2 कप ग्लास डाल दिया, नहीं, उसको जितनी चने की दाल है उतने ही अगर पानी डालेंगे तो उसी में हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर पानी सुखाने में मुझे बहुत समय.
0: अच्छा,
1: इसलिए
0: ये सावधान.
1: हाँ, ये सावधान. और बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा बेसन और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिलाकर हम उसको बाइंड करके उसकी टिक्कियां बना लेते हैं, तब बनेगा अच्छे से, नहीं तो बाइंड होने में दिक्कत हो.
0: बिल्कुल. अच्छा मैम, थोड़ा सा और किचन की साफ सफाई की अगर जहां तक बात करें तो उसमें कैसे क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है?
1: किचन की साफ सफाई हर खाने बनाने के बाद

0: साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है कि कीड़े हो जाना या बहुत चींटियां हो जाना ये सब एक आम बात है। तो क्या है विम का हाँ, अगर वो है या गर्म पानी से, अब सर्दियों में क्योंकि हम लोग घी का काम बहुत करते हैं तो क्या है गर्म पानी से अगर किचन साफ करें गर्म स्लैब उसकी तो ज्यादा अच्छा साफ हो, और जो विम बार का लिक्विड वगैरह डाल के विम का लिक्विड वगैरह डाल के तब साफ करेंगे स्लैब तो ज्यादा अच्छा साफ हो।
1: अच्छा एक चीज और इसमें याद आती है जो उन महिलाओं के लिए है खासतौर से जो भूल जाती हैं कि रात को सिलेंडर से गैस नहीं बंद करती हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: रात को गैस सिलेंडर बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी सावधानी दुर्घटना घटी वो स्थिति होती है, इसलिए रात में हमें अपना काम सारा खत्म करने के बाद गैस वगैरह साफ ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस रेगुलर रूटीन में नहीं साफ करते हैं तो गैस से लीकेज की प्रॉब्लम होती है और बर्नर जब खराब होते हैं तो गैस ज्यादा भी निकलती है उसमें वो होती है, इसलिए आप रात में काम करिए और बंद कर दीजिए, ये एक बहुत बड़ी सावधानी है।
1: जी हम जो किचन साफ करने के लिए या फिर यूं कहिए कि किचन के बर्तन जो हैं वो साफ करने के लिए जो एक कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े को हम कितनी बार धोना सही रहता है हमें? क्योंकि हम इस्तेमाल तो उसका सफाई के लिए करते हैं लेकिन जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वही गंदा होता है।
0: हाँ ये होता है जनरली
1: होता है
0: हाँ ये होता है, और ये अच्छी बात है कि काम हो जाने के बाद उसको गर्म पानी से धोकर और अच्छे से साबुन से रगड़कर उसका उसका गंदगी निकालकर धोकर और निचोड़ कर डाल दें जबकि अगले टाइम के लिए वो तैयार हो जाए, पता चला वो गंदा है और अगर वही गंदा है तो फिर दोबारा जितनी सफाई करी है वो फिर वैसी गंदी है।
1: बिल्कुल सही बात है। अच्छा जब हम किचन में काम करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं खासतौर से वो जिद करते हैं कि मम्मी हम भी साथ में रहेंगे ये वो, तो क्या उनको किचन में रखना सही रहता है उस टाइम पे?
0: छोटे बच्चों को किचन में रखना नहीं चाहिए क्योंकि वो हो सकता है कि हम किचन में कोई काम कर रहे हो और हम ही मुड़ते हैं और कोई चीज झटके से गिर गई तो बच्चों में जल जाएगा बच्चा या कुछ ऐसा हो कि हाथ पैर में लग जाए, इसलिए बच्चों को बिल्कुल किचन में दूर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे कबाब हमें बनाने बताए, साथ में किचन से जुड़ी हुई भी बातचीत बताई है हमें कि साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना चाहिए, सिलेंडर को हमेशा काम खत्म होने के बाद बंद कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ और संदेश अगर आप हमारी जो महिलाएं हैं क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा सुन रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: हम तो यही कहेंगे कि आजकल जो सब सफाई से रहें, और वैसे तो मैंने देखा है गांव में जब लीपा पोती जो होती है वो बहुत अच्छा लगता है जब काम
1: अच्छा।
0: वो वैसे भी वो करके और सफाई सुथरा से जब काम होता है किचन वो जो चौका लगा हुआ होता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है, साफ सुथरा और वो लीपा पोता हुआ है चौक पूरी हुई है वो जो है वो, इसलिए गाँव की महिलाओं से मेरा विशेष अनुरोध है और आजकल जो चल रहा है कि जो अपनी सफाई पर व्यक्तिगत सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, आसपास को साफ रख रहे हैं मगर अपने आप को भी खुद साफ रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

आपनो रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सभी सखियां सुन रही हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। और अब अपन ने सखियों जानो है वो कबाब बनाबे की विधि की प्रकार की होत हैगी और अपन जो बातचीत कर रहे थे भी मीनाक्षी जी अपने संगे हती। तो साथियों हम जाना थेंगे कि हमारी जो बहने हैंगी ग्रामीण क्षेत्र की हो चाहे शहरी क्षेत्र की हो सबके अंदर कोनो ना कोनो टैलेंट कूट कूट के भरो रहते है वो है ना कूट कूट के मतलब बहुत सारो टैलेंट रहते है लेकिन काहे कि उन्हें इतना हिचक रहेगी कि भैया हम कैसे बताएं सबके सामने कि कैसे का बना थे वो। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही में नहीं है काहे कि आप बलिया हमें फोन लगाओ और हम आपको बताएं बड़े आसान आसान तरीका से कि कैसे आप हमें अपनी विधि बता सकती हैगी। जो अपना नंबर है वो जी पे हमारी सखियां फोन कर सकती हैंगी व्हाट्सएप कर सकती हैंगी और साथ ही में अगर आपको हिचक कोनो हो रही हैगी बात करने में तो एक वॉइस मैसेज जो होते है वो आप हमें भेज सकती हैंगी। तो फिर क्या हुई है कि हम आपको इतने से फोन लगा के और आपसे बातचीत कर लेंगे कि अम्मा के चौके में आप कहा बताबो चाह रही है। देखो सबके पास अलग अलग आइडिया होते हैं जैसे मीनाक्षी जी ने अपन को किचन की साफ सफाई को लेकर कछु बातें बताई हैंगी सो ऐसी ही बातें हमारी और भी बहनन के पास जरूर हुई है। तो बहनों देखो कत हैंगी ना कि अगर तालाब में पानी भरो रवे और वो पानी निकल ना पावे के तो वो बदबू देर लगत है गंदो हो जाते है वो। लेकिन वो पानी अगर बहत रहे एक दूसरे से मिलत रहे आगे बढ़त रहे तो वो अच्छो रथ है शुद्ध रथ है वो। तो कभी को मतलब है कि ज्ञान कितने को बांटो अपन कम नहीं होते। आपके पास कोनो टैलेंट अगर है वो खाना बनावे को बेहतरीन तरीका आपके पास है अगर कोनो रेसिपी आपको बहुत अच्छी आत हैगी। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो अपने बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी पहले जो खाना बनाए जाते आज भी कितों कितों खत्म हो चले जा रहे हैंगे। तो अगर आपके मन में ऐसी कोनो विधि खटखटा रही हो तो आप हमें भी फोन के माध्यम से खटखटा सकती हैंगी और बता सकती हैंगी कि देखो और हमने जा विधि जानी हैगी और ये विधि से जो है

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे किसान साथियों के लिए फसल में काफी मुनाफा होगा। लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं, उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा। इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा को।
1: ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसे मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्ट्रेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला आइट्रेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं। तो उसकी वजह से आप सब जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल, तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायोबेस्ड भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर है ये?
1: पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो की रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर आल्सो नेगेटिंग इंपोर्ट रिलायंस।
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसेलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
1: हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फूडिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर लिया 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं उस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है, और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
2: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये?
1: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच हैज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज। तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी जो कि अभी नहीं है।
2: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
1: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपेंस, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
2: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
1: तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज शुरू होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितने दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
2: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्योंकि अभी हम सिर्फ अपेरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है, क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से, ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
1: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव एयर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है, मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
2: वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा?
1: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं, उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो, क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं जिससे कि AQI बढ़ता है और पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
2: यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं जो कि हम इन सबका एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उसपे हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
2: क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी?
1: तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पॉल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं।

0: हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है. उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी, उसमें जीएचजी एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है. तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है. उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सस्टेनेबल हैं. और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है, कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं. तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा, या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड. और इसके अलावा हम यूएन की एसडीजी गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उससे भी अलाइंड है. 12 हमारा मेजर गोल है, विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन. उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं. तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है, लेकिन यूएन एसडीजी 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं.
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है. लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी?
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं. तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे. जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं. जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे. हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है. तो जैसे जैसे हम एक एक पद आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें.
1: जैसे मशरूम माइसेलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक. लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी. तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे. जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे. और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी. तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे. जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं. जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे. वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें, और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके, जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी. तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे. हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सकें जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में.
1: अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे? और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है. हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है. जैसे हमारा जब फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे. फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा. तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला एट्रेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का. जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट. और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल.

0: जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं. तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर. तो जितना भी मार्केट है इट्स अ ट्रिलियन डॉलर मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है. सिंथेटिक से पीपल वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है. तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टूवर्ड्स दैट. उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं. तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल. हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी.
1: न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है.
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं. तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में. तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है. ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए. तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती है. अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है. तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के अंदर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं. हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे. इवन हम जो इंक्यूबेटेड है अभी IIT कानपुर में उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है. ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम आईडेक्स के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है. उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिल रही है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पे रिलाई करता है और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे. लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं वो आधे से ज्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा. तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है लेकिन आगे चल के भी क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले. तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं.
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए जैसे कि मैंने बताया ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है. फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए. तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइकलिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में. अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट. तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं. तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है. तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे.
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही है?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो. तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक

0: मान्यता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता, तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, क्योंकि हमारे भारत को अभी इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही है कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं, विधा को आनंद लेते हैं। यही क्रम में आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया प्रकाश कुशवाहा जी से, जो गुदरई के रहवाए हैं। और उनसे जाने के आपने जो विधाएं कहाँ से सीखी हैं और आपने का गाव है, ये सब बातें अपन प्रकाश भैया से करें और उनसे जानकारी अपन जानबो चाहें। सो यही के संगे संगे अपन प्रकाश भैया जी से मिलवे से पहला एक बढ़िया से गीत खुनसुनत, गीत को आनंद लेत, और फिर ये गीत के बाद अपन प्रकाश भैया से बात आगे करें। तो कहना अपन प्रकाशी भैया के गाय भय गीत को अपन सुन लेते हैं। सुना थे गीत को जी गा रहे हैं प्रकाश भैया जी।

0: बिल्कुल दोस्तों, अभिमान त्याग देना जो तुझ में समाया है। देखो कितना बढ़िया गीत अपन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया प्रकाश चंद कुशवाहा जी। अब आज दोस्तों प्रकाश चंद जी से आगे बात और करते हैं कि आपने कहाँ से सीखी है और कैसे जब विधाएं सीखी हैं। सो आप मिलते हैं प्रकाश भैया जी से। अच्छा प्रकाश भैया, जा बात बताओ कि बात करें अपन गावे बजावे की, तो आपने जो गावो कैसे सीखो?
1: भैया हम तो छोटे रहते जब सुगावन में राम सभा होती।
0: अच्छा,
1: महीना भर में कहो एक दिन बैठ जाए, कहो महीना भर में दो बार बैठ जाए, और कहो हफ्ता में एक बार बैठ जाए।
0: अच्छा, तो राम सभा में बैठे,
1: राम सभा में जाऊते।
0: अच्छा, इसके अलावा आपने कहा गुरु बनाओ तो कैसे हुई?
1: नहीं, हमने गुरु बनाओ तो भैया एक अपने रंगीला साहब हते।
0: अच्छा, रंगीला?
1: हाँ, रंगीला।
0: ये कहाँ के हते रंगीला?
1: हाँ, सी के हते। आज भी हैं।
0: अच्छा, उनका रंगीला नाम कौन नाम से जाना तूने?
1: रंगीला रंगी राही।
0: रंगी राही?
1: हाँ, रंगीला साहब बोला तूने।
0: हाँ,
1: उस भाजी हैं
0: तो उनसे आपने सीखी।
1: हाँ,
0: अच्छा, उनने आपको क्या चीज बताई थी सबसे पहले कि कौन हिसाब से आपने गुरु मानो तूने?
1: अब जो मानो तो कभी बहुत अच्छा लिखा था।
0: अच्छा, लिखा था वे?
1: हाँ, वे लेखक है।
0: हाँ,
1: तो उनकी लेखनी पे हम लोगों ने गाओ थोड़ा सा, हम लोगों को अच्छा लगा और उनकी वातावरण अच्छा लगा, इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा गावो सीख गए।
0: बिल्कुल सही बात है। जब आपने देखो लेखनी की बात कही, तो आप जो बता पाए कि आपने उनकी सबसे पहली लेखनी कहा थी, बात जो उन्हें लिख के आपको दी थी कि आपने गाई हो उनकी लिखी भाई।
1: देखो
0: कहा गाओ तो आपने ऐसो?
1: अब देखो उन्हें एक बहुत पहले एक चीज लिखी थी शुरुआत में।
0: हाँ,
1: एक बुंदेलखंड की चीज लिखी थी।
0: हाँ,
1: रंगीला साहब आते हुए।
0: हाँ,
1: और वे लिखते अपने, अब भजन कीर्तन है।
0: हाँ,
1: सब चीजें हैं।
0: हाँ,
1: तो भजन भी लिखते वे, लोकगीत भी लिखते।
0: हाँ,
1: अबे भी लिखत वे,
0: अबे भी लिखत,
1: अबे भी लिखत हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन अब बहुत
0: अच्छा। आपने उनसे संपर्क कब से नहीं करो, आपकी मुलाकात उनसे कब से नहीं हुई?
1: अभी हमारी कम से कम 5-6 साल से,
0: 5-6 साल से उनसे संपर्क नहीं
1: हो पाया है।
0: अच्छा, तो आपने उनकी का चीज गाई का आपको है ध्यान के कौन चीज आपने गाई?
1: अब जैसे अभी याद नहीं है उसमें।
0: हाँ, तो उनने कई चीजें ऐसी आपको
1: गाई है, लिख गई है, पार्टी भी हम लोगों की बनी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मंडल भी है।
0: अच्छा, मंडल भी?
1: मंडल भी है।
0: तो आपने कभी रेडियो बुंदेलखंड पे गाओ?
1: हाँ, गाया है हमने रेडियो बुंदेलखंड पे गाया है।
0: तो भी जो रेडियो बुंदेलखंड पे आपने गीत गाए वे उन्हीं के लिखे गाए या फिर कछु अपने और कवियन के हैं?
1: नहीं, उन्हीं के लिखे गाए हमने।
0: अच्छा, उन्हीं के लिखे?
1: रंगीला साहब के लिखे गाए।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो आपने कछु जो गाओ थे रेडियो बुंदेलखंड पे उनको तंथुर याद है कि हमने का चीज गाई थी?
1: हाँ, हमने एक वो गाई थी उनका, थोड़ा सा एक गजल थी।
0: हाँ,
1: अभिमान त्याग देना।
0: अच्छा,
1: एक गजल गाई थी हमने, वो बहुत शुरुआत में गाई थी हमने, आज कम से कम 6-7 साल पहले।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा सा याद है कि अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है।
0: हाँ,
1: और हंसा की चाल भैया कभी चल नहीं पाया है।
0: हाँ,
1: हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया है, अभिमान त्याग देना तुझ में जो समाया है, वो हंसा की चाल कौआ कभी चल नहीं पाया। ये चीज गाई थी
0: आपने? ये चीज गाई?
1: हाँ।
0: अच्छा, जब से आपने उते से गावो छोड़ो, मतलब जब उते रिकॉर्डिंग करे आए थे, उके अलावा फिर बैठे आप कहूँ मंडल में सभा में के?
1: नहीं, हम जब से वहाँ से छोड़ा तो हम लोग बैठे नहीं पाए है।
0: हाँ,
1: अपने काम में बिजी है, बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा गावो बजावो कम हो गया।
0: सही है, अब गृह जीवन में
1: समस्याओं से बहुत जूझना पड़ रहा है।
0: सही बात है,
1: क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास में, जाएगा जमीन नहीं है।
0: हाँ, सही बात है।
1: तो अपन तो मजबूरी कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं।
0: सही बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक संगे संगे जो गावो बजावो है, इसे मनुष्य के जो जीवन है इस पे क्या प्रभाव पड़ती है गाय से?
1: एक जो पुरानी इतिहास याद आते हैं कि हम पहले कैसे थे।
0: हाँ,
1: आज क्या है?

0: है हम लोग।
1: सही बात है
0: भाई, गाने बजाने की एक ये परंपरा है।
1: हाँ,
0: बुंदेली भाषाएं हैं।
1: हाँ,
0: इनमें सारी भाषाओं का कीर्तन भजन होते हैं।
1: हाँ,
0: तो एक ये है कि हम लोग एक इतिहास को उठा लें अपना, कि कोई इतिहास ही से गाया जाता है।
1: हाँ, सही बात कह रहे, इतिहास से भी गाया जाता है।
0: तो आज पुराना इतिहास को उठा के देखें अपन। हाँ, तो पुराने इतिहास में बहुत कुछ मिल रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: और अब पुराने इतिहास तक कौन जा पा रहा है?
1: सही बात।
0: अब नए अपने अपने बना रहे हैं,
1: और नए पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के
0: नए तरीका से बना रहे हैं।
2: कट पीस में आने लगे।
1: हाँ, कट पीस में आने लगे। सही बात कह रहे हैं आप।
2: संगीत और गायन टूटे हुए हृदय की औषधि है।
1: हाँ, टूटे हुए हृदय की औषधि है। सही बात कह रहे। और गावे बजावे से अपन को जो अपनो शरीर है या फिर
2: उमंग
1: पैदा होते ही
2: शक्ति संचार पैदा हो, शक्ति को संचार पैदा हो,
1: शक्ति को संचार पैदा होते ही
2: गावे से।
1: चलो, बहुत अच्छी बात है। और जो नियुक्त के अगर अपन भक्ति में हो जाए या फिर गावे में उतर जाए तो अपनों सब दुख भूल जाते हैं।
2: सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि जब आदमी
1: गावे में
0: कीर्तन पे आ जाता है तो वो सारी चीजें छोड़ देता है, क्योंकि उसको सतता ही उसमें दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: कि अच्छा और बुरा क्या है, तो अपने आप नियमों का पालन करने लगता है।
1: सही बात है। तो इसके अलावा आपने और कछु सीखो कभू ऐसे, जैसे क्यों पार्टी में गए हो कभू आपकी आमने सामने जवाबी कीर्तन में गए हो?
0: जवाबी वाबी ना लड़ते हैं ना अभी। हाँ, आज तक कोई गाया है?
1: अच्छा, आपने जवाबी में नहीं गाओ?
0: नहीं, नहीं, नहीं, हम नहीं गाते हैं ना। हमको हमने सबसे बड़ा समस्या हमारे पास में यही रही है कि हमको इतना समय नहीं रहा है।
1: हाँ,
0: और ना तो हम इतना गा पाते हैं।
1: सही है।
0: थोड़ा बहुत बहुत हमारे माता दीन भैया आ जाते हैं, सो हमने बोल दिया है।
1: चलो, बहुत अच्छी बात। वो कहावत भी नहीं है कि अगर मन में है होलक।
0: हाँ, तो खंजड़ी का ढोलक।
1: हाँ, है क्या? सही बात है। अगर मन में होलक है तो ना खंजड़ी चाने ना ढोलक चाने, अपने गुनगुना लेते।
0: अभी पहले की परंपरा में सवेरे 5 बजे जनी मान से उठ जाऊते।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
0: पीसन लगाती।
1: हाँ,
0: 5 बजे उठ के पीस रही हूँ गावे को, बड़ा शौक है तो उस टाइम में।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात।
2: अभी कड़ रही हूँ गावी रही,
0: गा रही हूँ कम से कम 10-10 किलो पिसिया पीसे नहीं।
1: हाँ, सही बात।
0: पूरे परिवार को चक्की पे कहूँ पिसावे आटो नहीं गई।
1: सही बात कह रहे आप।
0: उनने अपने वही पिसा के
2: वो
0: गावे गावे में उन्हें 10 किलो गेहूँ पीस लो।
1: हाँ,
0: अपने मणि मणि को बना के खुआ दो।
1: सही बात।
0: लेकिन उन्हें जो ही शौक है तो कि हमें गाने हैं।
1: हाँ, सुबह चकिया के बहाने गावी लेती,
0: गावी लेती
1: और अपनो काम भी कर लेती
0: है।
1: परिवार के खावे को पीस लेती,
2: बीमार नहीं होती
1: और गा लेती।
2: सही बात है। बीमार होने
0: हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं बीमार। आज देखो तुम तो 100-100 साल की बाई आज भी बैठी हैं।
1: सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं,
0: बैठी हैं।
1: हाँ, नहीं बिल्कुल
0: गा रही हैं खूब।
1: अच्छा प्रकाश भैया, आपसे एक बात और जानना चाहे कि आपकी माताजी को कभू आपने देखो गाउत?
0: चकिया पीसर? नहीं, हमारी माताजी ने खूब गाया है। आप तो बुढ़ी हो गई। खैर,
1: नहीं आप तो बुढ़ी हो गई, लेकिन जब भी अपने परिवार चला उठती, अपने बाली बच्चन हो खुआ पिया उठती, उस समय पे तो आपने देखो ही है कि माताजी पीस रहे हैं, गा रहे हैं।
0: खूब गाया उन्हें, खूब उन्हें चक्की चलाई वो।
1: हाँ,
0: चकिया चलाई।
1: हाँ, और आपकी शादी क्या साल की हती जब हो गई थी?
0: हमारी शादी करीब 30-32 साल की लगभग में हुई भैया।
1: तो आपकी मिसेज को क्या नाम है?
0: हमारी मिसेज का नाम है जानकी देवी कुशवाहा।
1: जानकी देवी कुशवाहा।
0: हाँ।
1: अच्छा, कहूँ जानकी देवी ने पीसो?
0: नहीं नहीं नहीं, मिलो
1: उन्हें नहीं, उन्हें नहीं मिलो। अच्छा, जब चकिया नहीं हद बची थी पीसवे के लाके, या फिर जे पीस के नहीं जानती थी, या फिर
0: चकिया तो आज भी रखी?
1: चकिया तो आज भी रखी।
0: हाँ, लेकिन
1: लेकिन सुख सुविधाएं मिल गई इन्हें।
0: हाँ,
1: जब पहला चक्की नहीं रखती थे गाँव पुरा में, क्यों चक्की नहीं होती? चक्की है अब तो, चक्की हर मोहल्ला में है, हर जगह है,
0: हर जगह चक्की हो गई है।
1: और कछु ट्रैक्टर वाई चक्की चल गई, घर जाके पीस
0: पीस रही है।
1: तो आपकी ने एक सौ ना गावे को सौंक रहा हो ना पीस भी?
0: बिल्कुल नहीं।
1: जब जिनने पीस हुई नहीं है तो गाँव कहाँ पे भी?
0: अब बात तो मैं ना पूरी।
1: हाँ,
0: कि जब गाने का शौक हो जब तो वो पीसे।
1: हाँ, सही बात है।
0: गाने का शौक नहीं है।
1: सही बात।
0: सब सुविधाएं दे दें।